0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सैटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान में वोकला के एक ग्रुप ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और वॉशिंगटन से कहे कि वो बैन अल-अक्वामी फौजदारी अदालत ICC की जापानी सरबराह के खिलाफ आयद पाबंदियां वापस ले। वोकला ICC की सदर अकाने तोमोको के उस दौर के तालिब इल्म हैं जब वो वस्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर में कानून के स्कूलों में पढ़ाती थीं। अगस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ICC की क्यादत पर यह इल्जाम लगाते हुए पाबंदियां आयद की कि वो बदनीयती के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन पाबंदियों में अमरीका में अकाने के असासों को मुंजमद करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकला के इस ग्रुप ने तकरीबन 1,74,600 दस्तखत ऑनलाइन हासिल किए और जुमेरात को डेप्टी चीफ काबीना सेक्रेटरी ओजाकी मासानाओ को पिटिशन और दरखास्ती खत पेश किया। खत में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो वाजह तौर पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का इजहार करे और इन्हें हटाने के लिए ठोस बातचीत करे। जापान में कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने कारकुनों को सार्फीन या कारोबारी शराकतदारों की तरफ से हिरासा किए जाने या बदसलूकी से बचाने के लिए इकदाम करना लाजमी है। सार्फ की जानिब से हिरासा किए जाने की तारीफ ऐसे रवैये के तौर पर की जाती है जो समाजी तौर पर काबिल कबूल उसूलों से मुतजाविज हो। इसमें मसनूआत और खिदमात से गैर मुतल्लिका मुतालबात करना, कारकुनों को घुटने टेक कर मुआफी मांगने पर मजबूर करना, नीज चीख चीख कर डराना धमकाना शामिल है। लेबर पॉलिसी प्रमोशन कानून में की गई एक तरमीम कंपनियों को पाबंद करती है कि वो ऐसी बदसलूकी का सख्ती से जवाब दें और अमले के तहफ्फुज की अपनी पॉलिसियों को मंजरे आम पर लाएं। कंपनी पर लाजिम होगा कि वो हिरासा किए जाने वाले कारकुन को सूरत हाल से अकेले निमटने की इजाजत ना देने जैसे उठाए जाने वाले इकदाम से अमले को मुत्तला करे। कंपनियों के लिए मुशावरती बूथ कायम करना भी जरूरी होगा और मुतासरीन की नफसियाती इमदाद करनी होगी। इकदाम नाफिज ना करने वाली कंपनियों के लिए एक मुमकिना सजा ये हो सकती है कि उनके नाम अवामी सतह पर इफ्शा कर दिए जाएं। अमरीकी खबर रसा मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 सबसे ज्यादा बाअसर उभरते सितारों की अपनी सालाना फहरिस्त में क्योतो के यावाता सिटी की मेयर कावाता शोको का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने बुध के रोज टाइम 100 नेक्स्ट 2026 फहरिस्त का ऐलान किया जिसमें ऐसे रहनुमाओं को शामिल किया गया है जो समाजी सरगर्मियों, तफरीह और खेलों समेत अपने अपने शोबों में मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहे हैं। साल 2023 में कावाता शो को 33 साल की उम्र में यावाता शहर की क्यादत के लिए मुंतखब होकर जापान की अब तक की सबसे कम उम्र खातून मेयर बनी। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में बजाहिर एक मामूली फैसले यानी जचगी की छुट्टी लेने पर दोबारा तारीख रकम की है। मैगजीन निशानदही करता है कि अगरचे जापान कारकुनों को जचगी की छुट्टी फराहम करता है लेकिन मुंतखब मेयर्स इन लेबर सहूलियात से बाहर हैं, इसलिए अमल करने के लिए किसी साबिका नजीर की अदम मौजूदगी में कावाता ने एक नई मिसाल कायम की। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने 16 हफ्तों के लिए अपने इख्तियारात डिप्टी मेयर को मुंतकिल कर दिए और इस दौरान दूर बैठे ब्रीफिंग्स में शिरकत जारी रखी और अहम फैसलों में भी शामिल रहीं।
1: सामिन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ लाएं।